शब्द घोर पीरा गहर गंभीरा, शब्द घोर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग भौराना।

माई चरण गुरु मीठे, माई चरण गुरु मीठे, बड़े भाग देवे परमेश्वर, बड़े भाग

सरकार के आकार नाना प्रकार। श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं, जोग भोग

भाई उदय सिंह ने, साहबजादा अजीत सिंह ने ऐसी तेग चलाई, दुश्मनों नु भजना पै गई। सरसा बड़ी ठाठा मार दी सी, इस नु पार करना बड़ा औखा सी। सरसा दे किनारे ते गुरु महाराज दे सिख संगतां ते गुरु महाराज दा परिवार।

कहते अपना जय जय देखा तय तय पूर्ण उनसे निकली पूर्ण मछली पानी को बिछड़ी नहीं से जीवन हो गया। गुरु का सिख जिस वेले गुरु ने हुक्म बिछड़ा है तो बख्शिश ही बख्शिश है, जिससे भी मनमत्र आ जाता है तेरे लगी आर होता है अपने पानी जो चले पाई सो बिछड़े जो मच्छी की जाने सागर के दावत पंछी की जाने आकाश के दावटा पाई सजा सिख की जाने गुरु के दावट है मेहमान न जाने वे वे वा पाठ तेरा पर भाई सज्जा चला जा गुरु कौर ये विचार बनाया है तो एक चिट्ठी भी मेरी ले जाए जाके गुरु नु देके अरदास करी कदे मैं पापी से ही बख्शिश करे गुरु मैनू भी दर्शना दीता भाई सज्जे ने किया ठीक है गुरु साहब अगे गुरु की चिट्ठी तेरे को ले आया हां ते तो नौ महीने ढक दिता है तेरे तेरी पत्रकार लेके गुरु को चला गया गुरु 18 महीने तक रहेगा उन्होंने की कर मैं नहीं जाना चंगा भी तेरी मैं ख्याल है चलो मना अपने पिंड चलते शहर कोई बच ही गया हो तो भाई सज्जा अपने पिंड पर आया की वेख्या जिथे कखा की कुली सी उसे आलीशान मकान बनया बिर बिर पिया तक जे सुदामे ने तकिया सुदामे उत्ते भी यह समाया भगवान कृष्ण से सुदाम दोवे सुदीपर की कोट पढ़ते विद्या पढ़ एक दिन सुदीपर जी की घरवाली ने किया बच्चे हो जी मां जी घर भी लकड़ा कोई नहीं लकड़ा लिया जंगल दोवे तुरते सुदीपर जी की घरवाली ने सोचिया बच्चे हम जल्द भी जा रहे हैं तो लगेगी सुदामे गल सुन कौन लै थोड़े गए छोले रंग चने रंग पोटली बन दिते किसी दाढ़ी भुख लगे ये खा के ते पानी का पुट पी ले चले गए लकड़ा कटिया पंडा बनिया सिर के चुकन लगे निरंकार की रेत मारी दाढ़ी मारी रात पे भगवान कृष्ण ने किया सुदामे हम कि करिए घर तो पहुंच नहीं सकते जंगल का मौका है सुदामे ने क्या महाराज कोई आ दरख्त है बड़ा वड्डा इन उत्ते चल चलते हैं रात इतने बिताने दिन होगा फिर तक एक दान के उत्ते भगवान कृष्ण जी बह गए दूजे उत्ते सुदाम भुख लगी सुदामे ने वो छोले वाली पोटली कटी सुदामा सोचन लगा मैंने जिस तरह मैनू भुख लगी है कृष्ण नू भी लगी होनी ते छोले छोड़े कृष्ण नू तो पता नहीं तो क्यों ना आप ही छक लेंगे भुख बड़ी जालम थी तो सुदामे ने की किया छोलिया वाली पोटली खोली ते एक फटका मारे यार सार संगत जिस वेले छोले दंदा थले आए ते सुदामे ने जिथे आवाज आई रात का समा जंगल का मौका टिकवी रात तो दूजे दान उते बैठे भगवान कृष्ण ने किया सुदामिया कुछ खांदा पे सुदामे ने छेती छेती मारा इतने पता की खाने मैं तो कुछ नहीं बैठा भगवान भी चुप कर थोड़े समय के बाद सुदामे जिस वे दूसरा बुका मारे रवादाई भगवान भी कह
लगे हुए स्वामियों को खा रहे हैं। महाराज तो मुझे तो पता है इसे पता तो मेरी मां बैठी है मैंने कुछ देने वास्ते ऐसे गरीबा ना प्रयास न करे कर भगवान जी विजुक कर कोई समय में बात प्यारी साल से किसी ने सुना देने तीजा फटका मारे फिर आवाज आई भगवान जी कहने लगे स्वामी भावे मन से चाहे ना मन पर कुछ खा जरूर है महाराज थानू कि पता है भगवान जी कह लगे सानू आवाज भी आती है दंदा की तो सुनामी ने कि हमारे तुम बड़े खोए थानू पता नहीं मेरा शरीर जरा दुबला है ते बारिश हुई है ते शरीर भुखन लग गई है ते मेरा तो दंद से दंद पिया बजता है ते तुम कि कमरे तो उस वेले भगवान पीछे ने बचन कर दिता जाओ दलिद्री दलिद्र कहते हैं कंगले नीवी दलीर जाओ दलिद्री तो मित्र प्रोह किया है क्योंकि वन के खाना संत जी दिखा के खाना शर्मिंदगी ते खो के खाना गंदगी जरा खो के मैं खाता है वह गंदगी खा भगवान ने वो वचन किया पूरा संदीपा जी की को पढ़ के विधेय भगवान कृष्ण जी तो द्वारका नगरी ने मार्ग जा बने तो सुदामे ने कर सारी दुनिया का दलिद्र है कारोबारी सुशीला निके निके बच्चे खान को कुछ नहीं मिलता है तो सुशीला ने किया कानी मैं सुनिया है कि भगवान कृष्ण थोड़े मित्र सुदामे ने किया था पढ़ना भगवान को क्यों नहीं जाते आप भुखे पर मरते जे भगवान कृष्ण वर्गा तो मित्र है नाले वो अवतार भी है नाले राजा महाराजा भी है वो भी को क्यों नहीं जाते कुछ मिल जाएगा इस दिन चंगे मती तो जाए स्वामी ने कि आपका गांव वाली गल तो तेरी ठीक है पर मित्र को बदले शर्म यात्री है शर्मका भी वो अवतार भी जरूर जब तो भाई साहब भाई गुरुदास जी लिखते हैं विप्र सुदामा दाल भी विप्र कहते पंडित सुदामा ब्राह्मण दाल भी बाल सिखाए मित्र सदाए लागू होई बावड़ी करवाली सुशीला जड़ी थी उन्हें मजबूर कर दिया स्त्री का हट भी बड़ा जबरदस्त स्त्रिया खेल है वो भी बड़ा पर्व लागू होई बावड़ी मिल जगदीश दलित्र गवाए चलता गिरदा गिटियां कीकड़ जाइए कौन पिलाए ये ठीक है बचपन इकट्ठे खेलते रहे खाते पीते रहे पर वो राजा बन गया मैं तो गरीब आदमी किस तरह की कोल मुलाकात होगी किस तरह में कोल पहुंचे भाई साहब जी लिखते चलता गिरदा गिटियां कीकड़ जाइए कौन मिलाए उनका नगर द्वारका से सिख द्वार खुलता है कई मेरे बात सिंह भगवान को भी कहे जिसने द्वारका पहुंचे भगवान कृष्ण के महिला को अंदर जान लगा दरबार में रो क्या किधर जा रहे हैं जी मैं भगवान को मिल जाए पीछे हट बेचारा सुना मैं डरता आया पीछे हट कोई गल नहीं मैंने अभी पता थी गरीबा को कहां होते थे ऐसे कारवाली ने जिद की थी आना ही नहीं पर सुदामा रो मना इतनी दूरों आए निराश ही चले जाएंगे भगवान ने तकिया रोंदा क्यों है सुदामे ने किया बड़ी दूरों आया आस तार के मित्र को मिलवा कहना मित्र भगवान कृष्ण मेरा मित्र राहो भगवान कृष्ण के मित्र अपनी शक्रवर्ता रहे इतने राजे महाराजे आके खड़ोते कोई पूछता नहीं तू कि मित्र रोह पे कह लगा है दरबार मैं सच की दरबार के बीज ला के थके मत्थे से तिलक लगा होया ब्रह्म जा इतनी खैर पहला मैं जाके बेनती कर सुदामा बाहर खड़ोगे
ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਰੁਕਮਣੀ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਚਰਨ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ? ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਖਰੋਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵੇਖੇ? ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੋ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਸਭ ਪਤਾ

प्यास लगी, पानी दी पाल की थी, एक खूह नजर आया। उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों ओ पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल। पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है। पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरुष सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता। पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलिया नू प्याया, कुछ लोकां नू भी प्याया, ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी ले। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना, जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी तां पीना है जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं तां मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा है कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उसे खूह दे कोल बैठ गए, हाथ विच खड़ता।

करनी धरती नू के इंद्र बरसात जिस तरह धरती बरसात नाल प्यार करती बरसात पवे ता धरती खिल उठदी है कुसम फुल नू के बास खुशबू जिस तरह फुल दे नाल पवरा

जिथे अंब लगा हुए कोकल जा बैठदी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी है। इसे तरह मेरे रमैया जिवें धरती पानी नाल प्यार करदी है, बरसात नाल पवरा फुल दे नाल कोकल अंब

मान सरोवर हंसला हंस जड़े ने मान सरोवर नाल प्रीत करदे ने मान सरोवर ते रहंदे ने। भगत नामदेव जी बयान करदे ने चकवी को जैसे सूर बाल है, चकवी जिस तरह सूर दे नाल अपनी

तरनी के औरत नु कांत पति जिस तरह औरत पति नाल प्रीत कर दी इसे तरह है परमेश्वर मेरे रमैया।

हर थां जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मन विच भी ए परमेश्वर तू है गए ए नाम देव भी तेरे नाल इन्ना प्यार करदा है जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होण।

ए प्रीत दा शब्द पढ़िया नामदेव जी ने अखां बंद ने ओ खूह पानी दे नाल नको नक भर गया। संत ज्ञानेश्वर ने क्या नामदेव अखां खोल देख परमेश्वर ने तेरी बेनती सुनी सारा खूह पानी नाल भर गया। नामदेव जी ने अखां खोलिया देखिया कि खूह पानी नाल भरे है। लोग जड़े ने हथां नाल ही पानी कड कड के पी रहे ने ता संत ज्ञानेश्वर कहन लगे नामदेव सचमुच तू परमेश्वर नू अपने वस विच कर ले है। जिस तरह तू कहना है ओ परमेश्वर करता है। और नामदेव जी सगा चुम उठे ते कहन लगे परमेश्वर सचमुच तेरा नाम बड़ा सोहना है तू आप

कबीर साहब नू गुरु दी लोड़ है। अधी रात घरों उठे गंगा घाट जा पहुंचे, जिहड़ियां पौड़ियां तो स्वामी रामानंद उतरिया करदे सन। कबीर साहब मूंह सिर लवेट के उन्हां पौड़ियां ते जा के लम्मे पै गए। इस कथा नूं भाई गुरुदास जी ने अपनी पौड़ी दे विच बयान कीता है। आप स्वामी रामानंद बारे इउं अपनी पौड़ी विच लिखदे हन।

ऐसा शुरू किया स्वामी रामानंद दे पैर लगा के एक एंडा के उठ राम के राम को पाई गुरुदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद दे आश्रम वाल तुर पए। स्वामी रामानंद जदू इशनान करके जांदे सन दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नू इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके कपड़े भी पवाए सिर ते ताज भी रखे आ मुकट कलगी भी रखी पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद दे दरवाजे दे बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकट रख बैठे ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी जे ता हार मुकट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा क्योंकि हार छोटा पे चिंता विच नहीं के सिर ते सजाया मुकट लाना ठीक नहीं ते मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा किवें करा ता कबीर साहब बाहर बैठे सन उन्ना जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्ना विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा ओ एक दूसरे दे मना दियां जानदे ने ते कबीर साहब ने बाहरों कहा स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा ते हार दी गंढ खोल के हार गल विच पा के फिर गंढ मार दे। आवाज सुनी स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए उठ के बुआ खोलिया बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है। कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां तुसा मैनू गुरु दिखिया दीती। स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दिखिया दीती नहीं अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम को उदू दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं तू ते मेरे नालों भी अग्गे चला गया है तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान लई है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है कत जाइए रे कर लागो रंग। ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क ना रहा।

चौकी ते रखे है, रोटी पकाई अते लस्सी रिड़की, लस्सी रोटियां ठाकुर दे अगे रख के ते तन्ना हाथ जोड़ के बैठ गया। ठाकुर नो

तीसरा दिन चढ़िया ते तन्ना कहन लगा हों भी मुंह ना जुठालसा तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडता दे हथों खाना ते मैं भी जाटना फिर मेरी भी जिद है कि जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना तू मेरे नाल

0: परमेश्वर नू रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तां असीं खा ली हुण दस तैनू चाहीदा की है। तू याद कीता मैं आया हुण मंग तैनू की चाहीदा। तां तन्ने ने हाथ जोड़ ले कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दीए। लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला परमेश्वर अकाल पुरख

गौ भैंस मांगो लावेरी। गौ भी चाहिदी ते मझ भी चाहिदी पर हुण लावेरियां लावेरियां कहिंदे ने दुध देण वाली। मझ भी चाहिदी गां भी चाहिदी पर ओ जिहड़ियां दुध देंदियां होण।

परमेश्वर घर बन गया। दाल आटा घ्यो ये भी मिल गए। पैरी पाण वास्ते जुतियां, सोने पाण वास्ते कपड़े भी मिल गए। अनाज भी मिल गया, गां ते मज भी मिल गई। आन जान वास्ते एक घोड़ी भी मिल गई। सोहना घर बन गया, पर एक चीज की कमी है। भगवान कहन लगे धन्या, ओ केड़ी कमी? कहन लगे परमेश्वर, ओ कमी है घरवाली दी। भगत जी कहंदे ने, घर की गेहन चंगी, घरवाली आज्ञाकार, तेरा नाम जपण वाली चाहीदी है। भगत जी अपनी बाणी विच

लोग बड़े दूर चले गए। गुरु ने खालसे नूं अपना स्वरूप दिता है ते ना लिखे आ, जदू तक खालसा खालसा रहेगा वो कदी हारेगा नहीं। मैं भी उहदे नाल रहांगा ते जिदा सिर्फ भेस ही खालसे वाला है, जिदी रहत नहीं वो खालसा नहीं। खालसे दा मतलब खालस, जिदे विच कोई विकार नहीं, वैर विरोध दी भावना नहीं। जिदा जीवन विकारां तों उत्ते है वो खालसा, ते खालसा गुरु दा रूप। पर बड़े ऐसे लोग ने जिन्हां दा पहरावा ते है पर वो गुरु के सिख नहीं।

महापुरुष गुरमुख नहीं हैगे, गुरमुख भी हैगे ने, भगत भी हैगे ने, महापुरुष भी है ने, खालसे भी हैगे ने, पर बहुते धर्म तो दूर, गुरु तो दूर, दुनिया नु धोखा देंदे ने। महापुरुषां दे जीवन दी नकल, भगतां दे जीवन दी नकल असलियत नहीं। इथों तक कि जेड़ा उठदा है ओ गुरु नू, ओ परमेश्वर नू खलौना।

गुरु दी रहत तो दूर ओ गुरु की खुशी कदी प्राप्त नहीं कर सकता। आओ अरदास करिए सच्चे बादशाह कर कृपा। उच्चा सुच्चा गुरसिखी जीवन दे असलियत वाला जीवन नकला भरिया जीवन नहीं अंदरू होर बाहरू होर जेहो जिहा जीवन होवेगा ते कौम नू हमेशा औकड़ा दा सामना करना पवेगा। जगह जगह सिर ना चुकाओ वखरे वखरे

कब तन का गुड़ सतगुर जित मिल हर पड़ता गया तू तन तन सुन रहे मैं तुझ बिन अरे।

वही नदी के किनारे थे, दुनिया नु तारन वाला मेरा तन गुरु नानक समाधि लगा के बैठा।

अमृत न प्राप्त कौन कर दे हम जिन भिम बरसे अमृत धारा मन पीड़े सुन शब्द विचार जिन्होंने भाई शब्द न सुने कन्ना कटोरे बना के निरोल अमृत बाणी का रस पीता है और खुशकिस्मत गुरु नानक के दर से सदा ही अमृत रसता है और पीले भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे उन्होंने झूठे अमल की लोड़ ही नहीं जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे अठे पहर महल विच चानन बरन प्रेम दे दीवे फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते हैं दीवा जगाने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी पहला तो दीवा बनाइए फिर उसनू पकाइए ओदे वास्ते तेल सरसों नपीड़ के कढ़ना पैंदा सरसों किस तरह उगदी बड़ी मेहनत फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा बच दी लोड़ ओदे वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाइए भाई दीवा ए सोना दीवा जगाई किवें जगेगा प्यार दे नाल दीवा दे जो भी जग गया दीवा ते लोकी आपे कहेंगे कि फलाने घर दीवा जगदा पे आखो सी भाई सारे आखो भाई सरत माई भाई जो मेरे धन गुरु नानक ने दरबार चाहे जुड़े हो आओ भागा वाले हो अपनी रचना पवित्र करो सेवक दे कण सफले करो प्यार नाल आखो सतनाम धन्यवाद जो गुरु दे प्यारे जुड़ बैठे हो और गुरु जिसने सानू सबों कुछ दिता है साडे वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार नहीं बेबे ने किया सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लक्ष्मीदार तुसी बाहर चले जाते हो ए फिर उदास होके मेरे को आ जाते ते कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है आखो सी अगला भी कोई बापू दूजिया के बापू अपने बच्चिया मठियाईया लिया के दें खिलौने लिया के दें तरह तरह की चीजा लिया के दें बेबे साडा भी कोई बापू वीर मैं इन्हों छाती ना ला के कहनी हाँ पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है वीर हुण ना जाए हुण ना परदेसां नूं जाए तो प्यारी साध संगत परवकारी दाता जी दोवां बच्चियां नूं श्री चंद ते लक्ष्मीदास गोडियां ते बैठे सानूं ठा दिता पुत्र जगत का मिठा मेवा है प्यारिया पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता की छाती चल जाती है पर मेरे दाते ने अपने पुत्रों नूं उठा के ते बेबे वाल मुखातर होके कहा सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले रब आप ही पाल सी सारिया नूं जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दिला रहे बेबे मेरे निरंकार रब नाया संसार दुनिया दुखी है काम करो लो मोहंकार दी अगली सदी बेबे मेनू जान दे ना बिठा इतने संसार रोगी हो चुका है ते संसार रोगी नाम दा दारू दिता उस दाते ने जिस दाल गुरुपुरब मना रहे हो यही दात बनती है आए कर प्यार नाल पढ़ो पहले सेहत बोले तो पिछे सारी सही संगत गज के अपनी अपनी हाजरियां लगवा बाबा जी बचर करते सन जरा संगत जाके रौला पाता है तो इतों कुछ नहीं ले जाता जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं करता
بابا جی کہندے سن او گرو کی دگاہ کا چور ہے، تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے در تے دی حاضری لگ جاندی ہے، گرو نانک حاضر ناظر تے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپور منایا سفلا ہو جائے پیاری صاحب سنگت، پہلا سر بولے پیچھے ساری سنگت۔ واہ گرو نانک۔

झूठ ना बोली संगत विच खलोता है। हाथ जुड़ गए, बाबा जी मां जान के सेवा कदी नहीं की थी। ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी आखन लगे, ओए चनना मां नू तके मार के रब नू घरों बाहर कढ के ते संतां दे डेरियां ते सुख भालदा फिरदा है, ओ तेरी मां नहीं ओ तेरा रब है। जे तू सुखां दे नाल झोलियां भरनियां ने ते जा अपनी मां दी सेवा कर, तेरा रब तेरे घर बैठा है। ते सतसंगियो कलगी तर पातशाह भी यही आख रहे ने, कहिंदे जिहड़ा सिंह अपनी माता पिता दी सेवा नहीं करदा उहदे नाल मेरा कोई संबंध नहीं है। जिहड़ा अपने बजुर्गां दी सेवा नहीं करदा सत्कार नहीं करदा उहदे नाल मेरा कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। उहदे नाल रिश्ता है जो अपने माता पिता दा सत्कार करदा है, अपने बजुर्गां दी संभाल करदा है। ये भी एक रहत है।

सूके का सित हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसी धरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भो करिया ऊडे ऊड आवै सह कोसा तिस पाछे बछरे शरिया तिन कवन खिलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया सब निधान दस अठ सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल

से जन युग में सुखवासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निर्भो ध्याया जी तिन का भौ सब गुवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समा

एक पढ़े बो सिमरत सासत जी कर क्रिया खट कर्म करंता छे भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरम

कभियो बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष सबै तुम घावो, आप हाथ दे मोय बचाओ, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक शिक सबै।

जो करियो रक्षा राख लियो मोरा अखण हारे शैव संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बप धरा काल पाए शिव जीव अवतरा काल पाए कर विजन प्रकाशा सकल काल का।

ताकों कर पाहन अनुमानत, महामूल किछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत ने भिव, आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कई रूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत पुज खान बहोर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी सेट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप सियंभव, आवर इच्छा मेरी तुम करो, शिख उबारा शिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, शकल मलेश करो रण घाता, जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवे मरे, पुरख जीवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार ध्याए हैं, ताके काल निकट नी आए हैं, रक्षा होए तैं सब काला, दुष्ट अरिस्तरे तत्काला, कृपा दिस्तन जाय निहर हो, ताके ताप तनक मो हर हो, रिद्ध सिद्ध घर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वय सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताए उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट

वह करके अर सात समुद्र में की मत कहो। काट वनस्पति सगरी दिख बहु के देखन काज बने हो। सार सुता पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपा

तेरो अंत न कहो मैया कूट फराद हमारे कंधो कूट फराद हमारे कंधो अनख विधि समझाओ अनख विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आ

गुरु नानक पातशाह संसार नूं उतारदे होए जदों सिद्ध मंडली विच पुजे, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे अमोलक दरगाही बचन सुन के सिद्ध बड़े प्रसन्न हो। सिद्धां ने बेनती कीती कि जिस परमात्मा दी कथा अकथ है अते जो परमेश्वर सारियां नूं रिजक दे रहा है, लैण वाले थक जांदे हन, देण वाला कदे नहीं थकदा। ओ परमेश्वर जो अनथक है, गरीब निवाज कृपा करो, सानू दसो ओ साहब कैसा है, उसकी साहबी कैसी है, उसका नाम कैसा है। तां धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे हन, साचा साहिब साच नाए, ओ सच्चा साहिब है, उदा नाम भी सच्चा है।

अमृत वेले उठ के इशनान करन दा किड्डा वड्डा महात्म है। कि तेरा तन भी अरोग हो जावेगा, तेरा मन भी अरोग हो जावेगा, जे तू इशनान करके एक मन होके जपेगा श्री वाहिगुरु। साहिब बाणी विच बख्शिश करदे हन पहली राती फुलड़ा, फल भी पिछा रात। रात दिन दे 24 घंटियां विचों 2.5 घंटे इस श्वासा दा दसवंद जो गुरु दे लेखे लाउंदा है। आख्या गुरु कदे उसकी बाह फिर छड़दा नहीं, इस लोक विच भी परलोक विच भी हर वेले गुरु अंग संग है। जदों असी शामा दे दीवान विच सतसंग विच बह के, सतसंगत रूपी बगीचे विच बह के नाम रूपी फुलां दी वाशना लैंदे हां, आख्या ए सिख दी कमाई नू फुल लगदे हन। जदों सोदर रह रास्ता पाठ कीर्तन सरवण करना ते सौण तों पहले आराम करन तों पहला कीर्तन सुहेले दा पाठ करना, ते जदों गुरु का सिख अमृत वेले उठ के इशनान करके अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणा नाल जुड़दा, ईश्वर दे चरणा नाल जुड़दा, तां आख्या हुण सिख दी कमाई नू फल लग गए हन। पहला फुल लगते हैं फिर ही फल लगते हैं। इसलिए हजूर कहें तेरा जीवन भी अमृत वेला है, ते भाई तू अमृत वेले उठ के आ वेख्या अमृत वेले किवें हवा रुमक रही होंदी है, अमृत की बरखा हो रही होंदी है, जिथे तेरा तन शीतल

वाणी राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होए, इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड्डी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जाना। इसे तरह कितना समा सतसंग कर दी रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा।

गुरु अर्जन देव जी का कातिल दरअसल जहांगीर ही सी, पर जहांगीर तो इलावा मुर्तजा खां ते चंदू दा भी हाथ सी। चंदू बादशाह जहांगीर दा शाही दीवान सी। जदों चंदू दी धी मुटियार होई ता उसने अपनी धी वास्ते चंगा वर्कर लभन लई एक पांदे ते एक नाई नू जो कुछ समझा के तोरिया है उन्हां बोलां नू ढाडी जथा हे क्यों दसदा है।